0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकी के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
1: कृषि व्यवसाय में तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट करी खेती व्यवसाय के नियमित हर हिसाब राख के विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेर के खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरंतरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कई के समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: न्यू इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज, तिनकुने, काठमाडौँ।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: का हुई कमल आइने बुखाइल बाटो त
4: हेरिन काका थाई फुला टुरे बारीमा गेल रही सबो काट देलिन 20 निकाल देबी कि कहके लेके आल बाटो
3: सबो कटलक 20 तक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाई पठाकौ कमल भाई वहां दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हुक र बिखार सब पकटलक हो कि नि हो के पट्टा लगाख सर्वदम सब उपचार में प्रयोग हिना एंटी वेनम से उपचार कर
4: सर्पदंश उपचार केन्द्रक विषयमा मै फेर सुनल त रहु
3: तर कुछ दिन कही आइएन तुरन्त उपचार केन्द्रले जाडारी नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार गर एन्टी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध गरेठा प्रत्येक चिन्ता लिहनी परत
4: खाइ ना तौ न तुइन कुछ फेर नि होइ मै एम्बुलेन्स न फोन कइ सकले बाटो
3: एम्बुलेन्स आपुगा समय लागत था मर छवा सन्देश मोटरसाइकलमा बैठाक तुहन उपचार केन्द्रमा लै जा दि रे बाबु सन्देश
5: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा सापनका कटाइले मनैनक मृत्यु नभएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुइना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गरेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठरलरह पठा सर्पदंश सम्बन्धी भरपर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेजिठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश.
7: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
8: सूर्य ज्योति सही प्लान
9: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: பச்சவுரி ராஜாலிங்கோரில் நம் சைலா பீராட்டி துய்தின் பாசுஞ்சல் தன்னுபாத்
1: குஞ்சன்ஜி அஜை எக்தமே ரமாயில வைருக்கசை அர்ஜன்ஜி அம்ரோ குஞ்சன் வைனிக்சங்க
2: எக்தம் மிட்டா கித்தர் சுன்ன பாய் ரहியக்கொசன் நாமிலி சுரிஸ்ஜிர்
1: வைவன்னியில்
2: त्योभन्दा पहिले अब हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ व्यापारिक विश्राम र छोटो बाल गीत सुनिसकेपछि फेरि तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो कृष्ण सार एफएम बाल प्रतिभा र कृष्ण सार एफएम छोडेर कतै पनि नजानुहोस् है
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550 डीले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन् सब एकदम खुसी हुन्छन् तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठुलो भूकम्प आउँछ रेडियो सुन्दै गर्नुहोस् अब बाँकी कथा अर्को भागमा श्री एफई 550 डी सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टिल
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्यज्योति सही प्लान
5: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त, पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
3: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482-63-399।
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, जीवनको लागि।
6: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
7: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
8: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
7: सम्पर्क बीर डेन्टल किल्ली, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
8: फोन नम्बर 081-532-375।
9: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध:
10: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई, कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई,
9: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई,
10: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी,
9: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई, कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई, एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई,
10: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
9: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
11: ओहो आज डाई नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करे ना कहटो।
12: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
11: ए बात तो ठीक है कहलो साची की अस्पताल में क्या क्या सुविधा मिला था
13: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
11: ए ओसिनो कला से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
13: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सकुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: UFO Megahertz Krishnasar Jattike Tez
1: Extreme Energy Drink
2: Time Check Ahile Thik 7 Bajeko Chha
3: Extreme Energy Drink Taste the Difference Feel the Energy
4: Yadde Musta Doro Taj Hero Ta Purwa
5: What a Hair Buriya बर्खाक समय फेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुस्ती सपोर्ट आइ सकता
4: ओहो हो निका ठक समझनो घरक आंदा पादा झफास फे बाहर तक अच्छा कटा हिलबा काटा पना रह
5: हां असी करी हर बुढ़िया ओसिन हो कलसे काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाक बासी खाई दूसरा असल परिवार मने मिलक सर सफाई करबी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तनी हुई
4: हुई था हो बुढ़वा असिन देला मदर ध्यान घास फोहर झफास बिल था म सांप नुख बैठल रह सकथना
5: वो और सेट कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलक घरक आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काठे पे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुह कर पे सांप मुसकु छु के पैठनी सेकना मेर का चबदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई लसे सांप अइना त ओष्टह कम हो जाई त
4: काल शनिश्चर थे हो बिहान का फुर्सत थे बा
6: साप बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुक्रा बाहिर निस्कठ
7: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फे साप मानव बस्ती लघ आइसक्ठ
8: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्छिठा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: सर्जकहरूले तोकेर त गीत लेख्नुहुन्न, यहाँको भर्खरै एउटा नयाँ गीत पनि आयो, एकै चर्चामा छ, त्यो विषयमा हामी कुरा गरौँला। तर त्यो समयमा चाहिँ एउटा गीत लेखकको सङ्घर्ष कस्तो थियो?
1: अब यस्तो पर्यो, अब मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै म चाहिँ के भने मेरो नेचरले नै त्यो मैले अब फिल्म लेखन भन्दा पहिला रेडियो नेपालमा गीत 37 सालमा रेकर्ड हुँदाखेरि नै चाहिँ म चाहिँ अब मेरो गीत गाइदिनु पर्यो भनेर सङ्गीतकारहरूलाई गायकहरूलाई भन्ने हिँड्ने खालको परिनँ म, होइन। अहिले फिल्म यो लेखनमा पनि त्यस्तो मैले सङ्घर्ष चाहिँ गरिनँ, किनभने पहिलो फिल्म मैले लेखेको बादल भन्ने फिल्मको कहिले यो मन खरे कहिले यो मन छहरा भन्ने गीत, अब यो चाहिँ यसको निर्माता पनि हाम्रो गगन बिरे कवि गगन बिरे साथी नै हुनुहुन्थ्यो, अनि यसमा मैले गीत लेखेँ। त्यो गीत चलिसकेपछि अनि यो मोहनीको रसिलो अङ्गुरो भन्ने गीत लेखेको त्यो पनि चल्यो। मेन त के भने डाइरेक्टर भन्दा नि म्युजिक डाइरेक्टर हाम्रो समीजित बासकोटाजी, होइन, उहाँले नै चाहिँ ल सुरेन्द्रलाई चाहिँ दुईवटा गीत सुरेन्द्रजीलाई दिनुपर्छ यसो भन्ने टाइपले चाहिँ, अनि त्यसपछि अनि निर्माता निर्देशकहरूले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ त्यसरी लेखेँ।
0: जस्तो गीतकै प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँले मोहनीको गीतको कुरा पनि गर्नुभयो, रसिलो अङ्गुर, त्यो त्यो समयमा पनि निकै नै चर्चा थियो। भनिन्छ नि एउटा गीतकारले समग्रमा एउटा सङ्गीतकारलाई गीत दिँदा खासमा मुखडा सुनाउँदा कसरी सुनाउनु भएको थियो यी गीतहरूको चाहिँ?
1: त्यो हुन्छ फिल्मी गीत लेखनमा के हुन्छ भने अब मेन त अब सिचुएसनै हुन्छ, होइन, सिचुएसन त्यसपछि हामीले लेख्ने, अब एक्टर भन्दा नि अब त्यो सिचुएसन स्टोरीमा क्यारेक्टर कसले गाउँदैछ भन्ने चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हो, एक्टर को खेल्दैछ भन्ने चाहिँ त्यति अब हामीले याद गरिँदैन नेपालमा, होइन। तर के पनि सिचुएसन चाहिँ अब कसरी कसैले चाहिँ टोटल स्टोरी नै सुनाउनुहुन्छ, कसरी कसैले चाहिँ खालि गीतको यो सिचुएसनमा लेख्नु पर्यो अनि पात्र चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, यसरी लेख्ने हो। धेरै गीतहरू चाहिँ मैले पहिल्यै ट्युनिङ फाइनल भए हुन्छ क्या, त्यो ट्युनिङलाई मैले लिरिक्स लेख्छु क्या। जस्तै अब कालो चस्मा लगाउँमा भने पनि मैले ट्युनिङमा लेखाएको गीत हो क्या, यो पहिल्यै ट्युनिङ बनिसकेको हुन्थ्यो, त्यसमा यो शब्द भर्ने हो क्या। फिल्मी लेखनमा चाहिँ प्रयास हो, अब कति गीतहरू चाहिँ त्यो पहिल्यै ट्युनिङ भइसकेको हुन्छ क्या। जस्तै घुम्टो भन्ने फिल्मको गीतहरू, यो टाइटल सङ घुम्टो, यिनीहरू सबै ट्युनिङमै लेखेको गीतहरू हो।
0: भनेपछि त्यो बेलामा यहाँले लेख्दाखेरि कालो चस्मा भन्ने गीतको ट्युनिङ चाहिँ भइसकेको थियो, अलिक सुन्न मिल्छ त्यो कस्तो कस्तो कस्तो गर्नु भएको थियो सम्बोजित बासकोटाज्यूले?
1: होइन, यसमा चाहिँ डमी लिरिक्स केही पनि थिएन, होइन, अनि त्यतिकै ट्युनिङ मात्रै थियो। अब अब यस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ, अनि त्यो मिटरमा ठ्याक्क आफूले चाहिँ गीत कण्ठ भइसकेपछि अनि शब्द भन्ने म चाहिँ त्यस यो के अरे खुस्मा फिल्मको चाहिँ यो हाम्रो निर्देशक भाइ अशोक थापा चाहिँ, अनि स्टोरी सुन्दा सुन्दै मैले चाहिँ यो रुकुमैकोलाई चाहिँ थेगो बनाउँछु। अब रुकुमैको त्यति अब युजुअलमा त्यति मिठो थेगो चाहिँ लागेको थिएन कि सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ, तर अब के एउटा फिल थियो भने अब गीत अलिअलि चले पनि यो रुकुमैकोट भन्ने ठाउँको चाहिँ एक्सप्लोर होला, ठाउँको मान्छेले धेरैले थाहा पाउला भन्ने हिसाबले मैले यो दुई लाइन चाहिँ, यो एक लाइन चाहिँ, यसकै हुक लाइन चाहिँ उहाँले त्यो स्टोरी सुनाउँदा सुनाउँदै मैले लेखिसकेको थिएँ क्या, रुकुम बाइकोट भन्ने चाहिँ हाल्छु गीतमा भनेर चाहिँ ठ्याक्क प्लानिङ गरिसकेको थिएँ, अनि घर आएर चाहिँ रुकुम बाइकोट आँखा नि राम्रो हो मन परेन एउटा भनेर यो हुक लाइन यो बनाएर अनि पछि लेखेको यो
0: नेपाली चलचित्र लगायतका थुप्रैमा आफ्ना गीतहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छ। पछिल्लो पुस्ता नयाँ पुस्ता बिचको अन्तर, गीत लेखनबाट एउटा सर्जकलाई हुने मुनाफाको कुरा, त्यस पछाडि केही आर्थिक अर्थोपार्जनका कुराहरू पनि आउलान्, गीत लेखेर बाँच्ने कुराहरू पनि आउलान्, होइन। अब यो लामो समय यहाँले यो चलचित्रमा गीतहरू लेख्दै गर्दाखेरि कहिले खट्कियो मनमा, आर्थिक रूपमा कमजोरी पनि भयो या गीत सङ्गीतमा लाग्यो, गीत लेखियो पारिश्रमिक राम्रो भएन, सर्जकका रूपमा चाहिँ पाउनुपर्ने त्यति सम्मानहरू आएनन्, वा मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ, मेरा आफ्ना सिर्जनाहरू बजेका छन् सुनेका छन् भन्ने के लाग्यो खासमा चाहिँ?
1: अब यस्तो अब यो गीत जब मैले 37 सालमा मेरो पहिलो गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड भयो 37 सालमा, त्यतिखेर म ल क्याम्पसमा ल ब्याचलर पढ्दै थिएँ, र अब त्योभन्दा पहिला त म खास गिटार बजाउने मान्छे हो, अनि जब गीत लेख्न थालेँ, गीत लेख्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अहिलेको पिँढीहरूले चाहिँ अब गीत लेखनलाई प्रोफेसन बनाउँछु भनेर पनि सुरुवात गर्न सक्छ, अब त्यतिखेर त अब यो प्रोफेसन बनाउँछु भनेर मैले गीत लेख्न थालेकै होइन, होइन। अहिले पछि फिल्म गीत लेखन सुरु भइसकेपछि नि फिल्म गीत लेखन प्रोफेसन बन्छ भन्ने सोचेर लेखाए पनि होइन मैले, अब त्यो आर्थिक कठिनाई भने त अब त्यो मान्छेको अब विभिन्न अब लाइफको आरोह अवरोहमा त्यो हुने कुराहरू हो, त्यो धनी मान्छेलाई हुन्छ, अब राइटरलाई नै हुन्छ, इन्जिनियरलाई नै हुन्छ, डक्टरलाई नै हुनु सरलाई छुट्टी पाटो गर्थ्यो, होइन। तर के भने अब मैले चाहिँ अब यो प्रोफेसन यही बनाउँछु भनेर चाहिँ लेख्न सुरु नगरा भएर चाहिँ अब त्यो आर्थिक पाटोतिर चाहिँ त्यति अब यो लेख्न थाहा पछुताउ पनि होइन, केही पनि छैन क्या।
2: तरकारी तथा फलफूलको मूल्य उकालो लाग्यो। गोलभेडाको मूल्य वृद्धि 142%। गाजर, लौका, हरियो प्याज, घिउ, सिमी र अदुवामा समेत 50% भन्दा बढी महँगियो। संघीय मन्त्रालय पुनर्संरचनाको काम तीव्र। मन्त्रालयको नाम परिवर्तन प्रक्रिया शुरू भएको छ। जाजरकोट भूकम्पपछि पुननिर्माण सुस्त हुँदा हजारौं परिवार अझै पनि अस्थायी टहरामै बसोबास गरिरहेका छन्। वैदेशिक अध्ययनका नाममा ठगी बढ्दै विद्यार्थीलाई सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। र अमेरिकालाई 9 विकेटले हराउँदै लीग दुईमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। हवस् त, आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी राजेन्द्र रिजाललाई धन्यवाद। भोलि जेठ 3 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई सुशीला श्रेष्ठ पनि विदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ।
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
7: आइ विवेक, उठ्याङ खासक छपासोर जिन्छ हो।
8: अइ दै मर्किनु मर्किनु।
7: अइ शंकरयान, एक घरी फुटबल बन्द कर त। विवेक खन वहाँ का हुइलन, वहाँ छपच्यारो ना जाओ कहटन हुँ।
9: ओ हेरो त, वहाँ सब भागल पाटल की का हो। विवेक खन एक घरी स्कूली फुटबल ह्यारै लग त झन का दसा पो आपनन।
8: देव आली मेन त सब काटल मुना मुना।
7: विवेक जिना क्या संघारू, देव शांत होकर ढ्यू निचल का बैठो। हमरा तू यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी। अई पारस, तू घर डाबू हना मोटरसाइकिल ले खाए कहो ता।
9: हो विवेक हना यहाँ खुला ठाउँ में सुताई ढ्यू झल्यांग झुलुंग निकरा खना मारी कापी ले वही हना हौक दिहे तू फिल्म काटला खल सुइटी बा काटल ठाउँ न छुओ चलाई निहुइत ना।
7: आप मई विवेक हना सजिल हुइना कहि खौ वाकर कसके लग पेटी टाक धीरा धीरा खोल ढेटू वो घरी वो मुंडरी फेंक हार देहम
9: बैठा रोशन। मई यह बेला विवेक का जुट्टा वो मजा धीरा धीरा निकाल दे।
7: ढ्यूर जसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह। समय में जो उपचार कराई सेक लसे बिखा सपन का काटल मन यहाना फे बचाई सेक जिठा। सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई सेक लसे वही हना भारी क्षति हुईना से जोगाई सेक जिठा।
10: विश्वास लगनाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सेक जिठा।
11: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
12: सापनका कटाई से भइसकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश।
10: नमस्कार, सर्पदंश से हुईसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध जनचेतना जगेना उद्देश्य लेकर अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपना स्वागत बा। मई पुष्पा
13: वो मई एकराज। आज कार्यक्रम को चौथा पैठार। आज हमारा सर्पदंश से बचकला काम करबे वो राटिक समय में का कसिन सावधानी अपनाई पठाकना विषय में संवाद करने बाटी।
10: विशेष कै खा रातिक समय में भइसकना सर्पदंशक जोखिम ओ बाँचकलाक अपनाइपर्न सावधानी विषयमा हमन सर्पदंश विज्ञ डाक्टर KN पौडेल जानकारी दिनेबाट।
14: सकेसम्म बाहिर जाने काम, खेतबारीमा गर्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ पर्यारोपण गर्दा पहिले नै सिद्धाएको राम्रो हुन्छ। आँखाले स्पष्ट देखिने काममा नै ठाउँमा समयमा नै आफ्नो कामहरू सिद्धाएको राम्रो हुन्छ।
13: सँगसँगै सर्पदंश से बचकलाक राठख ओ कामको ना समयमा अपनाइपर्न सावधानी विषयमा जानकारी दिन बिन्दु हो होम कुमार भट्टको एक चौथा पैठार फेर शून्य बाटी
9: ओ वर्ष अनाज भण्डारण गर्ना कोठा ओ काठी धन्दा ठाउँ ओ बिलामा साम बैठल रह सेठ हाम्रो होसियार रह पर्था ओ जुट्टा लुगा भन्ना स्यादोके मजासे जाँच गर पर्था जेहीले करबेर सर्पदंशसे बचासिक जाइ
10: निचलाख डुरहे रलसिए सर्प हमन निडास्ट बिन सर्प हमन से डरैठ यदि हाम्रा जानख निजानख सापन चरेली अथवा जिस्केली कलश्यभर प्रतिरक्षक स्वरूप आपन बचाउ करकलाक साप हमन डसुया होइट हुक्रा आहार खोजीमा बाहिर निस्कल ब्यालम घाँस काटबेर ख्यालबेर न्याङ्गबेर छुगैलन कलश्य मनै आक्रमण कर लगलक समझक प्रतिरक्षा गर्ना क्रम साप डस्ना गर्ठ
13: वाकर अलावा साप हमन क्षति पुगै कि का कना समझक हाम्रा सापन डेक्टिकी मार सहरिठी ओसी करबेर फेर साप हमन डस्ना कर्थ आपन गाउँठाउँ समुदायमा पाजेना सापनको विषयमा हमन जानकारी फी पठा ऊ साप कसिन कसिन ठाउँमा बैठ कुन कुन ब्यालमा बाहिर निस्कठ कुन छ्याकमा झुर सक्रिय रह कना विषयमा थाहा पहिले रह पर्था हाम्रो हमार घर आन्जर पान्जर रहल साप आकर्षित हुन ठाउँ व्यवस्थापन समयमा जो कर पठा
10: साप मुकरणा हुला पर्से आपन घर हो खेल मैदानका आन्जर पान्जर सड्ड सफा बनाइल रह पर्था छपास पठा हिला हो पटकोही खुरा हटाई पर्था कलसे काठी पैरा ओ सुखल घाँसक सही व्यवस्थापन कर पर्था रुखवा अथवा भुइँमा रहल फुवाङ अथवा बिलमा जथाभावी हाँट गुवास निहुई
13: रातिक समयमा हो कामको नगारामा हाम्रो कसिन कसिन सावधानी अप्नाए पर्था आफ्नो कुछ कसेकी सापनको जोखिम रहल ठाउँमा काम गर जिनासे आग कहाँ गर पर्था
10: एकराजी आफ्नो जिज्ञासक जवाब दिनासे आग हाम्रा श्रोता सहभागीनक प्रतिक्रिया सुनिन उहाँक र अप्नैलक सावधानी ओ महिहन ठाँ हुइलक बाटक टालमेल कत्रा मिल्था उफे हेर्वी हाम्रो कुछ श्रोता सहभागिन रातिक समयमा ओ काम गर्न ब्यालमा सर्पदंशसे बच आफ्नो कसिन सावधानी अप्नै नाकर ठिक ओ का कर कैख पुछल बाटी
15: मुहार नाउँ राजु चौधरी हो बाह्र बर्दिया डस मेरैया प्रायटा इट्टा रहल ठाउँमा साँप रठका हुँ मैनके बैठना जुर ठाउँके ऊ आजकाल इट्टा नि आजकल जुर रह मुसेनके बिलमा डसै घरके देवालवाल जोड्लक चिरारमा अष्ट अष्ट ठाउँमा नै साँप रठा आब हाँठामा लाइट लिएके निक्र परल कहुँ लट्ठी अट्ठी लिएके निक्र साँप डग्रीमा न भ्याँ ठोगिल कलसे आब ढपाइ परल नै ढपाइ लसे त हुन्छ काट रहे नि सुरहम त दबाई वाई छिटो परल कहुँ अलि घर आँगन सब सरसफाइ गर परल झोल ओल लगाएके सुत्ना न्याङ्ग घुमा गएर आजकालिक दिनमा त बुढ जुट्टा रहलसे एकदम मजा
16: धनीराम थारू हो बाँसे गरी हो भित्रही रहे नै बिलैमा त रहेँ अब पानी परत त निकर्थ्यौँ कुरे बाहिर कटकौरामा रहेँ टोहार सेला हो गए पानी परत तब निकर्थ्यौँ कुरे नै यहाँ बाहिर मोबाइल बाबा मोबाइल बारके निकलबो
17: म नाम हिलाल हो जगतपुर बरहियाटाल गाउँ पल्का पत्थरम रहेँ इटम रहेँ सब दर्जा आगे दर्जा बरबटम पाछस निकेबो केसाब करे केहरू मोटो उठ जेबो त अरे लट्ठी लेके कठौँ निकले पड़ल कहुँले से काट डेट
18: मो नाउँ रामु थारू हो मटेरिया गाउँ हो मोर वडा नम्बर चार परस बठुआ बाँसगढी नगरपालिका साँप खसे ई जस्ते कि हमरे कच्चे ईंटक देवाल उठेबो ऊ चौरमा रहें जब ऊ चौरमा रही तो अब पानी बरसी तो ऊ एकदम फाँफ मारी तो ऊ चौर से बाहर निकलक हैं बाहर निकल रही तो कबो द्वारिम नामल भेटा जेबो कबो बिसरक खटिया तरफ रहें नहीं मैं तो हेरो चप्पल लगा के निकलथूँ तज लहले निकलथूँ लट्ठी उट्ठी नाई लहले रखूँ मैं हेरो जल्दी ओटा मैं बाहर भी नहीं निकलथूँ बाहर करथूँ तो बिना टर्च लहले तो मैं नहीं निकलथूँ बाहर बचे के लायक तो हमरे अस्पताल जेबो कहूँ खटिया में सुटना भूं हम नहीं सुटना झूल के भीतर बसना
13: हमारा भर्खर सुनली सर्पदंश से बच रातिक समय में वो काम करने बेला में अपने लग सावधानी विषय में श्रोता सहभागिन का विचार उहाँमध्ये कुछ मनै रातिक समयमा अजरा दिया अर्थात् टर्च लाइक प्रयोग गर्न गर्लक आप कहिट पुष्पाजी उहाँको अपनैलक सावधानी पर्याप्त बाट
10: एकराजी सर्पदंशसे बच्न उपायक विषयमा समुदाय रसरस सचेत हुइटिबा कनाबाट उदाहरणको रूपमा आजुक श्रोता सहभागिनका विचार हुन लिएल बाटुमै रातिक समयमा घर बाहर निस्कबेर नम्मा लठिक प्रयोग कैख जमिनमा ठ्वाक ठ्वाक बजैटी न्याङ्ग पर्था यिनीले आन्जर पान्जरलक साँप भगैना मद्दत गर्था रातिक समयमा अजरार बत्ती अर्थात् टर्च लाइटको प्रयोग सड्ड गर पर्था असी कर्लसे आपन आन्जर पान्जरलक डुरसे ड्याख सेक्जेठा
13: पुष्पाजी म फेरि कुछ कहुना रही विषयमा साँप रहेसेक्ना ठाउँमा जाइ पर्लसे ठिउनसम्म पुग्न ठुल जुट्टा रबर का बूट वो ग्वारा छोपना बोक्ला लुगा लगाई पठा खाटा में केल सुटना कर पठा सुटे बेस झूल लगा का सुटना बानी बैठाई पठा संभव होइसम घरक झ्याल द्वारी में जारी लगाई पठा वो लड़का पड़कन साफ रह सीखना ठाउँ विषय में जानकारी देना वो होशियार रह सीखा पठा
10: अपना ठीक कर लिए राजी हमारा खेतवा डिगो मन काठी पट्टिया लगायत का काम कर बनो में जाए फिर नम्मा ल ठीक प्रयोग कई खुए में ठ्वाक ठ्वाक बजेटी न्यांग पठा कैली साफ घास सकाइल रना हुईला पर्से घास कटना ब्याला में अमीन ठ्यूर होशियार हुई पठा
13: राठिक समय में काम करना ब्याला हुई सकना सर्वदंशक जोखिम वो बचकलाक अपनाई पर्ना सावधानी विषय में जानकारी दिए आज मन से विभागीय प्रमुख कर्णाली प्रदेश सुर्खेत में कार्यरत सर्वदंश संबंधी विज्ञ डाक्टर के एन पौडेल
14: म सिनियर कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा विभागीय प्रमुखको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा कार्यरत छु।
19: सुर्खेतमा सर्पदंशका कठ्याक समस्या बा अथवा कर्णाली प्रदेशमा
20: कर्णाली प्रदेशमा सर्पदंश बडा समस्याको रूपमा रहल भयो। विषाहा सापनको मात्रा कम हुने से फे बिस्नेहुलक सापनको संख्या ढिउर रहल भयो। सिजनको बेलामा दिनमा तिन चार पाँच जनासम्म बेरमिन हेरिरहेको विषा कि हाम्रो दुई मिरिकबाट ढिउर जसिन मनिन ठाउँबाट जुन हाम्रो नर्भमा असर गर्न प्यारालाइसिस गरिन विषा साँप हो अरू चाहिँ रकटमा खराबी देखिन विषा साँपबाट हाम्रोमा चाहिँ रकटमा खराबी देखिन विषा साँप ढिउरबाट बेरमिनको रकट निजम्न पाटी होइन रकत बहटी रहना समस्या ढ्यूर जसिन भा कल से जोन पैरालाइसिस करना सर्पदंश वटा ढ्यूर निरलक अवस्था भा
19: और एक ठो प्रश्न जोन खेतवा डिहुआ में काम करना मने अथवा कही बाहर काम करना मने सर्पदंश का शिकार धेर बिना कर उष्टक रात का बाहर रहल ब्याला शिकार बिना कर बाहर रात का न्यागबेर नहीं देख पड़ यी बाहेक काम करबेर का कसिन होशियारी सावधानी अपनाई परी
20: बाहिर काम गर्न त आफ्नो क्षेत्रमा साँप ढ्युरबाट सर्पदंशक समस्या ढ्युर भएकोलासे स्याकलसम्म बाहिर गर्न काम दिन रटी घरिमा अथवा कही अजरालामा करल मजा होइठा आफ्नो काम देखपर्न बेलामा करल मजा होइठा एक नम्बरमा दुई नम्बरमा सर्पदंश ढ्युर हिँड्न ठाउँमा बुट जुटा लगाइ पठा काकर कि सर्पदंश ढ्युर गुवारामा जो होइठा हाम्रा दाडु भैया दिदी बहिनी हुँ काममा जाइबेर नङ्ट गुवारा जिन या चप्पल के लगाएको जिना कठ असिन बेला सर्पदंश ढ्युर हुन कठा ऊ वर्षे बुट जुट्टा लगिन हो कलसे सर्पदंश कुछ न कुछ मात्रामा कम होजिठा औरबाट हाम्रो गर्मी बेलामा मच्छरनसे बचकलाग जुन झुल लगिन कठी ओसीको फेर सर्पदंशमसे बचसिजिठा गर्मी हुइल कैखन बाहिर सुट्न छतमा सुट्न बारदलीमा सुटलकमा झुल लगेलसे कुछ हटसम्म सापन कटाइन कम कर सिजिठा झुल लगेन बुट लगेन नम्मा लुगा घर्न ऊ काट डाल कलसे सामान्य ज्ञान सबको झन हुइल कलसे बस्न सजिलो हुइठा हो सबको झन सहज हुइठा
19: आबी सर्पदंशकलाग भेरी क्षेत्र अथवा बाँके बर्दिया सुर्खेत डाङफेक सर्पदंशकलाग आक्रान्त क्षेत्र हो हाम्रो सर्पदंशकलाग और अपनाइ पर्न सावधानी का हो
14: अब हामीले अपनाउनु पर्ने अरू सावधानी
20: हाम्रो अपनाइ पर्न और सावधानिक विषयमा मै ईएफएम जे सुन्ती भाटी महाकल मै काका चाटु कलसे सबसे पहिला त सापनक कटाइमसे जोगनाजो बराबर थियो दोस्रो सर्पदंश हो गेल कलसे का गर्न सर्वदंश हो गेल कलसे चाहिँ विषा साँप डोमिनिया का डरण कलसे एक घण्टामा अस्पताल पुग्स्याक पर्ना मिरिक अध्ययन देखिल भा ऊ एक घण्टा हान हाम्रो पोइजन साइन पिरियड कैखन कलबाटी ऊ वर्षे सफ कटलसे कर्ना जौन हाम्रो पुरान चरण भा उहीले करबेर एक घण्टा बित्दिन हो कि कना डट रास पल भा जस्तो डौरीले बाँध्न पठा लुगाले बाँध्न पठा कैका डौरी खोज्न लुगा खोज्न यी हो ऊ हो कैखन हाम्रो ढ्यु समय बिताइ निभित ऊ वर्षे आफ्नो घरमा जौन सवारी साधन भा अथवा आफ्न घरमा नै हो कलसी लगघजन सवारी साधन मिल्था मोटरसाइकल काकरणी भए सबसे पहिला लगघक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजिना सप्प काटार कलसी नियकटा ख सासा बाहनको स्याकलसम्म सर्पदंश उपचार केन्द्र जहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूकोबाट उहाँ स्याकलसम्म कसैको झट्ट पुग सिक्न कना सोच विचार कै ख एक घन्टा भित्र पुग सिक्लसी सबसे मजा हुन्छ ऊ यी बिचमा बहन्न पत्तीले चिर्न बिख निकर्न असिन काम कै ख समय बर्बाद निकरकलाग मै सबको झन्से अर्जी करटु यहीले समयकेल बर्बाद हुठा ऊ समयमा बेन आफन सबसे लगक जौन सवारी साधन वा उहीले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सिर्जी ठाकरसित सर्पदंश उपचार केन्द्र जो गेल मजा उहाँको सापनको विरोध गर्ती रह उहाँ जसले चाहिँ सपनको बिख काट्दैन उपचार मजा मिठा निषेध दिन कलसे फे मजा स्वास्थ्य शास्त्र मजा एक लाख
14: सकिएन भने पनि राम्रो चिकित्सा भएको ठाउँमा जाने सल्लाह
19: गुरु आबैदावा छारफुक कलक फे सुन्जिठा ओसिन चलन फेबा असिन ओक्रकलाक अपनक सल्लाहका बा
14: हजुर हजुर यस्तो समय अघि भनिहाले हाम्रो
20: हजुर हजुर मैले तपाईँलाई फेरि कहिलानु कि ढिउर दक्षिण सपनको कटाई विषाह निरहत ओवर्से ढिउर हाम्रो डाडु भैया दिदी बाबु र ब्रह्मपर्थ हेरी मै झारफुकै चोखिनु महिना बिस निलागल गुरु ठिजा चोखिनु कठ जस्तो दसजना गैला कलसे उहाँको ठिक त हुई छ काँक्रा कलसी उहाँको विषाहसँग कट्ल निर जस्तो हाम्रो अस्पतालमा अहिले बेरमेन फे बिस निरलक सप कटलक बेरमेन त बिना बिरा कहिले घर दै छ अस्पतालमा अहिले बिस निलाग बेरमेन फे हाम्रो झारफुक कै ठिक पर्ने कै कहस उहाँको भरमर ठ दस मध्ये दुई तिन ठोकेल विषाहार ठ ऊ वर्षे सप कटलक मनिया झारफुक्कै ठिक हुइल फल्ना मनिया फेरि झारफुक्कै ठिक हुइल मै फेरि झारफुक गराउँ कै समय बर्बाद गरौँ झट्ट से झट्ट अस्पतालमा ल्याउनु मै सल्लाह दिएँ
14: लगभग असम्भव हुँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ सकेसम्म धानी जानीमा नगइकन स्वास्थ्य शास्त्रमै जाने सल्लाह दिन्छौँ
11: राति समय हो काम गर्न बिहानमा भइसक्न सर्पदंशक जोखिम हो वाचक लाग अप्नाइ पर्न साप्ताहिक विषयमा हमन बुझाडेलकमा सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर केएन पौडेलप्रति आभारी बाटी
0: दाई नानबा कहाँ जाइ लाग्लो त
21: हिसाब लाग्ता चर्पी जाइ टुका
0: ए रुको ना त कोसिन हो कल छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख जाओ
21: काजे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
0: का कर भाइ दाई रातिक बेला बाहिर निक्र पर्लसे वा टोइलेट जाइ पर्लसे जहिया फे टर्च लाइट बार्ख ओ लम्बा लट्ठी लेख के न जाइ पर्था का कर कि बर्खा छ्याक बा साप रहसेक ठ टर्च क अजराले सापन ड्या खसेक जाइ ठ ओ लट्ठी ठ्याक ठ्याक आव सुनख साप भक्ठ का
21: हो कत्रा मजा सल्लाह डेली मर छोटकी छै
0: दाई हमन्ना स्कुलिक म्याडम सरुक र साप्नु क सिक्ना ठाउँ छि न्याङ पर्लसे ओ काम कर पर्लसे जहिया फेठ फोसियार विपर्था गइख सिखैल बाटका आम्ह छेटवा दिभा झपास अथवा ध्यान घास रलक ठाउँमा न्याङ पर्लसे डम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजैटी न्याङ पर्था गइख कलबाट
22: साप बर्खा छ्याकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना फिलक कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुक्रा बाहिर निस्कठ
21: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फे साप मानव बस्ती लग्घ आइसेक्ठ विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
13: आज हाम्रा सर्पदंश से बचकला काम करबेर हो रातिक समयमा काकसिन सावधानी अप्नाइ पठाकना विषयमा संवाद कटिबाटी अवसम हाम्रा श्रोता सहभागिनका विचार ओ सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर से कर्लक बातचित सुन्ने
11: अठार बेलाभर बिन्दु होमकुमारका बटकोहिक चौथा पैधार सुन्न बेला फिल्बा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलिन अभियानमा सक्रिय बिन्दु होमकुमार आगक भागमा हवन सर्पदंशक बेरमेहन शान्त बनैला रह पर्ना हो बेरमेहन कुचुफे खुवाइ निभिट कनाबाट सिखैल रह ऊ वर्षे साँपक डसला ठाउँ स्थिर बनैला रहलकसँग बेरमेक देहीमा रहल टम्म कस्कैलक लुगा पेटी मुन्द्री खरी खोल्ख फाँफर बनाइ पर्ना बाट फे ठाँ पैली
13: हाम्रा लुगा वा जुत्ता घरमा से आग जाँच गर्न पर्ना सन्देश फे नाटकको आगक भागमा सिक्ल बाटी उसै ख सर्पदंशक बेरमेन मोटरसाइकल वा आउर झट्टै उपलब्ध हुन सवारी साधनमा सहजिलसे नै ख जत्ता साइकल झट्टै लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजाइ पर्ना सन्देश फे नाटक वेदन म्यालोमा पुख बिन्दु होमकुमार आज काका गर्छ थाहा पाइक्लाक हाम्रो फे उहाँ हुङ्करसँग जैन
0: राजीव मोटरसाइकल एठ्याँ ढरिटेनी हुई म्यालोमा त बडा भिड बा
1: भुइठा रञ्जनी खाली ठाउँ फेराइ छ
2: भुइठा मिठा राजीव मै उठ्र टुहा ओहो झपास फेराइ छ यहाँ त
1: झपास वा नजाऊ ना मै यही बाइक पार्क गरत हुँ यहाँ झपास रहस फे त निकम बा चली जाई
2: भुइठा मिठा राजीव
1: ज्या हुइला से फे हमार बर्दिया जिल्ला का जयनगर म्याला मा चक्रा ना उठाइला से फे कम नै हुई कलर बाहर बाइक धर्ना ठाउँ मा झपास रहस फे यहाँ म्याला मा चाहिँ नि रहिछ
2: उठ हो ना राजीव कहाँ कहाँ से टीना फलफूल भाराकुरी मेकअप का सामान बेचुया वो किनुया मने आज इठना
1: हो त आमन कसिन व्यवस्थित बा सफा फे बा आंजर पांजर कीरा मच्छर माछी सांप ना आइत कई का छपास पे सफा कर लबाट
2: उठ हो राजीव अब हमार जयनगर सुंदर जयनगर हुइला पर्छे हुई
1: अनि रञ्जनी खास मा तु महिना म्याला काकर गन्दो का सामान त तुहार कुछ किन्ना बा कना सट निलागत महिन
2: खास मनी हुँ कुमार महिया न लग कहीं से जो सफले रुआ बेन बजा ख साप न चल लग एकदम मन पर था का वो वर्षी नाला मले खेल लग तुहिन बेन हो जाए ना मने जुटल बात पक्का फिर सफले रुआ बेन बजा ख सब पर न चाहिए हुई जाए यार
1: तरह पे काका लगना तुहिन ता मैं ता छट्टिया मा सपा कट लग पर से हुई डर के लग लग था कलग
2: यार कुछ डर मान नहीं पड़ी का हूँ कुमार सबले रुवा कत्रा मजा से सब बहाना मोहनिया खसम मोहित बना खन चैना करता चलो का जाई
1: लेनी जाई तो
2: ले हेरो त कुमार सबले रुवा बेन क ढुन म कत्रा मजा से सब बहाना न चै जिबा आपन सब पट डोमिनिय हो जसिंदा
1: आ हो डोम सब पो जो हो तर आसी का सपन बेन बजा का सबले रुवा न चलक मही चाहि एकदम दुख लागत का हेरो बिंदु सब कु जिनवारन का आपन आपन अधिकार अछिनी स्वतंत्र होकर बाँच पाए पड़ता सापन के पेटा आपन अधिकार बाटिनी हो कि नहीं हो कहटा
2: उठा तो ठीक कर लोगे कुमार
1: आमन अपन मनोरंजन का लाख पस्सी का बिन पर बुनवा मोहित बनाकर और जहां मनोरंजन देना था एक को के ठीक नहीं लागत नहीं था वाकर ऊपर सापन का पेटा आपन विशेषता बाटिनी था खेतवामा का मुस्खा का बाली नाली का रक्षा कर था आमन जैविक विविधता हना संतुलन मनन था
2: उठा महीना फिर ठान बाका हूँ कुमार देवटू कहतो कलसी आसी सापन लठ बना कर नचे लग हेरना बंद आप तो खुश
1: ई बात सही कर ली नहीं अपना यह बात में आज दिन में टटला टटला जेरी खोए
2: ओहो जेरी बैठा बैठा खाई ना तो
1: बैठा अनि जेरी खा कर घर और लागा पड़ी ना पानी आई ना सूची बा
2: बैठा हूँ कुमार ओहो हूँ कुमार जेरी पुरी ओटल कारी बास कटरा मिटाइल हररा
1: आप बिंदु से का बात करसी ई जेरी पुरी ओटल कारी को होटल जयनगर साधु बाजे को होटल जयनगर बाजार मा ओल्ड फेमस बा अनि अत्रा लप डक्टी को बास आइना नै रहिट
2: उठ हो तर जावस ई साधु बाजे होटल का चाहि ना उठै परी कतरा सफा सुगर करै लरठ सबको खैना पन छोप क ढल लरठ माछे बन क नि देठ आभन कट्टा ताजा ताजा तरकारी स्वादिलो ओमी तरकारी रिझा के खोइठ जेरी कट का बात बटैना हो ना हो कुमार
1: आप जेरी पूरी और तरकारी का नाम किला उठैना हो कि खैना से हो मैं त खाइत ना
2: मीठा मीठा तत्ल तत्ल जेरी त खैलक मज्जा उ रखलक कट्टा स्वादिलो स्वस्थ कर मैं त उ फेरा मेला आइम कल से फेर जेरी खैल
1: मीठा
2: अनि जेरी ना उठैती उठैती तुहार फेर एक ठो बाटक त बड़ तारीफ करना को मन लागल त
1: का बात को बिंदु
2: का कलसी ना तमन्ना सप्ले रुआ बेन बजा ख डोम सब पहान लठ बना ख नचै लग देखु त कत्रा संवेदनशील हो ख हरेक जिनवार का अधिकार उठा स्वतंत्र हो ख बाँच पाइ पर था गई ख सुनबेर बड़ खुशी लागल बा
1: ए हो नै बिन्दु मैं त छट्टिया से कोनो के जिनवारन अपन मनोरंजन कला प्रयोग कलक मन नि पर
2: कसिन मजा विचार हुँ कुमार तुम्हार मैं त तुहिन से प्रभावित जो हुइन तर सप्ले रुआ कत्रा सजिलो से सब पहान अपन बस म धरा सिक्न हो का कटना के नहीं कटना
1: उटा हुप्रा पहिला हाँ जो सुरक्षा का सबको मापदंड पूरा कर ला रहा नहीं था अनि सबका कटला से बीस ना लागा कहीं का सबको सबको दांत निकाल दे रख था अनि कहाँ से सबका कटला से बिगार कर से की था
2: उफे हो ना तर फिर उसे ही का जो सबको सुरक्षित मापदंड पूरा कर से कर से था सरपटन से चीज बिना छेती है काम कर से कर लीजिए ना
1: हो था का दिनस पे आपन जुट्टा घरना से आगा जुट्टा मा कुछ बाकी कई का हेलर हट कला से वही है ना जुट्टा मा अनुक का बसला करे सा सब पक पटने नहीं रल हिस हो कि नहीं कहोटा
2: हो निका वो वर्षे तो अनाज भंडारण करना क्वाठा वो काठी धरना ठाउ वो बिला मा सांब बैठल रह सकता
21: हाम्रो होसियार रह पर्था ओ जुट्टा लुगा घन्ना से आगो फे मजा से जाँच कर पर्था जेहीले करबे सरपडन से बच सिक जाय
22: आमन पैरा पुरा क्या वटवा मसे पैरा तानबे ध्यान दे पर्था डोम जसिन सप भित्तर नुक्क बैठल सेक्ठा ध्यान खास खोल्टीमा टुक्क डोंडामा हात जगाए नि हुई ओसेका काल मकाल की भाई पर जाति नि देख पर सेक्ठा वह हुईला कुर्से खास काटबे ध्यान देखा काट पर्था
21: हो निका आम साप नुक सिक्ना ठाउँ मसि ल्याङ पर्लसे वा काम कर पर्लसे शब्द अतिरिक्त होसियार हुई पर्था खेतवा झपास ढ्याङघाँस हुई ठाउँ मसि ल्याङ पर्लसे नम्माला ठिटे खनेगे रातिक समयमा बाहिर निक्र पर्लसे वा चर्पी कर जाइ पर्लसे जैहा फे टर्च लाइट पार्ख ओ नम्मा लठी देखकेर जाइ आपन आजर पाजर साँप रहलसे साँप भगाइप्राक लठी मदत गर्था हो कि नाहि घुमकुमार
22: हो निका बिन्दु ले मिल्ने फ्या खा गई आप लग्ना हो कि घर हो बिन्दु
21: मिठा आप जाइ
5: मरे छैला ए मरे छैला याद नै पहिले पहिले
22: नाही बिन्दु कत्रा ठिकठाक बनाएको पानी आइ लागल झट्टा जाइका अब पानी आइ पलासे पुरा भिजादारी
21: ल्याउ ल्याउ ओरागिल का हुनकुमार
22: हेरो ना फेर कहाँ झपास टिकटक बनाई की जाइ लगल खोटा साँप रहस एक ठा काटी करसे तम्ह भक्कर ओटरा बात बटोलक नि हमरा फेर अंधार पे हुई लाग सकल
21: ओट ना मैं आ गई नु ली बैठ तू बाइक म
22: बैठ बैठ जाइ तो आप
21: बैठा अनि थाहा बा हुनकुमार आजुक नालम घुमाइ लकै ख इह बनै लक टिकटक घर परि लाइक पर हो ना अनि सुनो त दग्दी म दिनेशको घर पर्थन हुकैन सर्पदंशक सुई लगाएल पाछ हुकाहार स्वास्थ्यमा कसिन सुधार हुटी बाटन कना हाल खबर बुझ जैनाको हो कि
22: बात त ठिक कलट पर सर्पदंशक केन्द्रसे लेखाएल पाछ भेट्ने लुटी हाम्रा जाइन त एकचो भेटी दिनेश न पानी झम्कनास परिकलसे दिनेशका रेनकोट माग लैजित अनि
21: मिठा मिठा
6: छोटी रहबेर हुमकुमार न सप अकटक विषयमा बिन्दु हुमकुमार मेरा जाइ बाट बटुल हाम्रो पशु अधिकारको फे ख्याल गर्न सन्देश आज नाटक डेलबा कनमर बुझाइ भयो पुष्पाजी
8: आफ्नो बुझाइमा मै फे सहमत बाटु एकराजी साँप नचिना मनै फे सापनको अधिकार ख्याल गर पठा कलसे सापनको दसैँमसे आफ्नो ओ दर्शक मुकन बचाइक लाग सुरक्षित उपाय फे अपनाइ पठा कनामर तर्क भयो मै फे अब रातिक समयमा घर बाहर निस्क परल कलसे टर्च लाइटकसँग नम्मा लट्ठी लेख पुगेमा ठ्वाक ठ्वाक बजेटी न्याङ परि
6: बिन्दु हुमकुमार बाट बटुटी बटुटी आफ्नो एउटा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पो कर लगि पुष्पाजी
8: मै केल नै एकराजी हाम्रो सबैजना सर्वदलसै सुरक्षित रहलाक प्रतिबद्धता गर पर्था ऊ प्रतिबद्धता अनुसार पूर्व तयारी वा सावधानिक उपाय अप्नाइ पर्था सपदसलक पाछ उपचार केन्द्रमा पुग्लक दिनेशको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा थाहा पाइक्लाक बिन्दु होमकुमारक अरूभाग सुन जिन भुलिबिन
23: अत्र बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्तीबाटी
8: सहभागी श्रोता यही विषयवस्तु छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका आज यी भाग बसे मै पुष्पा
6: ओमै एकराज बिरा मङ्गटी औरो अङ्कमा सापन कटसाइमसे बच्दा उपाय विषयमा नवो जानकारी लेख ऐनी चोबाटी आजुकलाग बिराटी
8: नमस्ते यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक र बटुलक उहाँ हुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्वदंश रोकथाम परियोजना तर्फ से अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार गैख माननी हुई
24: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
25: नयाँ वर्ष 2083 नयाँ सपना नयाँ सुरुवात
11: तपाईका बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि नेपालगञ्जमै स्थापित विश्वसनीय नाम हो मेरीगोल्ड इंग्लिश सेकेन्डरी स्कूल। यहाँ शिक्षा किताबमा मात्र सीमित छैन, जीवन उपयोगी सीप र व्यवहारिक ज्ञानमा समेत आधारित छ। हाम्रा विशेषताहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक टोली भएको, आधुनिक शिक्षण विधि र विज्ञान कम्प्युटर ल्याब भएको, अनुशासित तथा सुरक्षित वातावरण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, डिजिटल कक्षा व्यवस्थापन, सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत सुरक्षाको व्यवस्था। नयाँ वर्ष 2083 लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। आफ्ना बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि आजै छनौट गर्नुहोस्। सम्पर्क मेरीगोल्ड इंग्लिश सेकेन्डरी स्कुल, नेपालगञ्ज 19, कारकाण्डो, बाँके। फोन नम्बर 98584 34605।

0: Telephonia. Extreme energy drink.
1: बहिनी हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
2: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
1: अच्छा ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
2: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
1: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
2: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
1: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
2: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
1: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
3: आस है तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
2: हाँ दीदिया,
4: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 9886073070 और 9815067682।
5: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
4: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्रावधिक बिग लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
5: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
4: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।

0: Japonia. Extreme energy drink.
1: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डालें, नाई ठीक आते हैं।
2: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेयर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
2: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
6: नेपालगंज 9 अवस्थित क वर्गको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हो जीवीएन माध्यमिक विद्यालय। उत्कृष्ट नतिजा सहित यहाँको बालमैत्री वातावरण, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई र शान्त परिवेशमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा विशेष जोड दिएको छ। जीवीएन माध्यमिक विद्यालयका विशेषताहरू: बालमैत्री वातावरण, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि, अनुशासित, सुरक्षित र शान्त वातावरण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, पीजीदेखि कक्षा 9 अध्ययनको सुविधा। आफ्ना बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि आजै रोज्नुहोस्। भर्ना खुल्ला भइसकेको छ जीवीएन माध्यमिक विद्यालय, नेपालगंज 9, बाँके।
7: सम्पर्क फोन नम्बर 98488820।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो दोनों डील करस